फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।

0: तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिठाई घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का खेतो मा सखारन कला मिनी लै जाई पर्ना रह
1: आबो उराइदा दान्ती पादा
2: ले ले मै मिनी बना क धै दिए तु लै दा दिस ना
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भित्ता मत ढिला पो बा माटी ने सब दिए पर टीका हाँ सब दियो अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छै
1: यहाँ दाई ये दाई राजम का डरल
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मथे मुस्कान हट सब का डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस करब
3: ना क्या काकी ओ मुस्कान निया क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास करना सुटाई हलचल निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो तो
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकल जैना मेकअप फाकर बना रही वो हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चला ना
2: बैठा भैया सब कटलक ठाक आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोल निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सब कटलक ठाक आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सब कटलक ठाम और लगा दी उठा नाना नू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्ट से झट्ट साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्ट सुमर बनाई सेक जाई दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गाँव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदंशक उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ा मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
3: लो लो लो काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही ठहरा रही का झट्ट से झट्ट सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कल से मुस्कान होना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपुआ डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकल सापन से फिर सावधान रह पड़ा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन सांप के काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा से लेसे भूख रख सपो विषार अलग निरलग परिचार के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से दिल कल से सपो डसलक मन यहाँ न बचाई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सकती था सपा दस लाख मने यहाना झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले वो मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी क्लाक वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
1: ल
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: ए रोका रोका रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-3 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जै भो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल
5: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार से लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बु से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
3: सासानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही जेठ 23 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 सम्पर्क राख्नुहोला।
3: टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली। We'll be right back.

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली फात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगरपालिका के टिकापुर के तमाम मेयर के सचेतनामूलक कार्यक्रम करती मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन तथा आत्महत्या रोकथाम संबंधी कार्यक्रम आगे सरती। पश्चिमी स्थानीय बाढ़ के प्रभाव कायम देश के तमाम स्थान में मेघ गर्जन सहित पानी पड़ना संभावना। मनसून के कारण पश्चिम के 33,000 से ढेर नागरिक प्रभावित हुईना अनुमान। विपद पूर्व तैयारी में जुटल तटीय क्षेत्र के वाड़ा उकड़ा नागरिक उकरण सचेत बनाई दी। दुईपटक 300 रन कटैना नेपाल पहिल टीम बेंगलुरू हे लगातार दोस्रो पटक आईपीएल के उपाधि। आप पूरा खबर टिकापुर नगरपालिका टिकापुर के तमाम मेयर के सचेतनामूलक कार्यक्रम करती रहल बा। टिकापुर नगरपालिका मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन तथा आत्महत्या रोकथाम संबंधी सरकार वाला हुकरण सचेतनामूलक कार्यक्रम करल बताया गिल बा। तमाम संघ संस्था के समन्वय और सहकार्य में सचेतनामूलक कार्यक्रम करते रहल टिकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रबंधन प्रमुख बलबहादुर रावल जानकारी दिले बाट टिकापुर नगरपालिका के भीतर आत्महत्या ढेर हुई रहल बा। मानसिक स्वास्थ्य में बिरामिया हुकरा ढेर रहल बाट कलस्ते स्थान छनौट करके कार्यक्रम करल प्रमुख रावल के कहाइबा। अटवार के ग्रेट हॉल एजुकेशन कंसल्टेंसी के समन्वय में विद्यार्थी उकरण प्रशिक्षण दैगिल बाकल से कंसल्टेंसी में विदेश जैना उकरण विद्यार्थी उकरण पढ़ना करलक वहां उकरण फे मानसिक समस्या हुईना करलक मोनोटिवेशन समेत मोटिवेशन समेत तरीका से प्रशिक्षण दैगिल बटोले बाट नगरपालिका हालसम 8 टोल विकास संस्था कुछ कंसल्टेंसी में सचेतनामूलक कार्यक्रम करल बा। अब 20 विद्यालय 2 टोल विकास संस्था में समेत कार्यक्रम करना तैयारी रहल प्रमुख रावल जानकारी दिले बाट। हाल नेपाल के मा समेत मौसम में तमाम वायु प्रणाली के मिश्रित प्रभाव देख परल बा। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार अब नेपाल के उपल्लो वायुमंडल में रलक पश्चिमी न्यून चापीय रेखा स्थानीय वायु तथा पश्चिम से लेकर पूर्व सम के लगे रहल न्यून चापीय रेखा के प्रभाव सक्रिय रहल बताया गिल बा। ई मौसमी प्रणाली के कारण हाल कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश लगायत के कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना कहलबाकल से बाकी तराई क्षेत्र में भर आंशिक मौसम बदलती बा। अब कोसी बागमती और कर्णाली प्रदेश के कम स्थान तथा गंडकी और सुरपश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जन और चट्टांग सहित हल्का मध्यम पानी पड़ती रहल महाशाखा से जनायल बा। सोमवार के फिर देशभर के मौसम में आंशिक से लेके साधारणतया मौसम बदलना देख गेल बा। अब हिमालय पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलना बाकल से तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलती बा। ये अवधि में कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत के कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली तथा पहाड़ी भूभाग में कम स्थान में मौसम बिगड़ना संभावना रहल बा। महाशाखा के अनुसार समेत इस क्षेत्र में साथे कोसी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में 1-2 स्थान में मेघगर्जन और चट्टांग सहित मध्यम खाल के पानी पड़ना और हिमपात के संभावना रहल बा। कर्णाली छाई हुकरण के सशक्तिकरण के लग 10 बुंडे कर्णाली घोषणा पत्र जारी करल बा। ज्योति फाउंडेशन से सुर्खेत के वीरेन्द्र नगर में कालिक सम्पन्न कर्णाली छोरी सम्मेलन 2083 कार्यक्रम से 10 बुदे घोषणा कर्णाली घोषणा पत्र जारी करल के हो। जेठ 16 और 17 गते संचालन हुई कार्यक्रम में कर्णाली के छायाकरण प्राप्त सुझाव के आधार में 10 पुदे कर्णाली घोषणा पत्र सार्वजनिक करलबा। सम्मेलन में मूलत कर्णाली के छायाकरण के उज्जवल भविष्य निर्माण के लाग बाधक बनल बाल विवाह लैंगिक विभेद कुप्रथा लगायत विभेद के समेत अंत्य के लाग प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संगे रणनीतिक एवं कार्ययोजना निर्माण करके कार्यान्वयन करना मांग करलबा। स्तंभ करके महीनावारी संगे संबंधित विभेदकारी हानिकारक अभ्यास से समूल समेत नष्ट करती महीनावारी है मर्यादित और सुरक्षित बनीना संघ प्रदेश और स्थानीय कानून के पूर्ण कार्यान्वयन करना सरकार वाला निकायकरण के मांग करना विद्यालय तथा सामुदायिक संस्था में महीनावारी के आराम कक्षा के व्यवस्था करके महीनावारी स्वच्छता सेवा तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध करना निर्णय करलबा। छायाकरण के उच्च शिक्षा अध्ययन के लग कर्णाली प्रदेश सरकार हो 79 समेत स्थानीय तहे छाई विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन करना तथा संचालन में रहल कार्यक्रम है व्यवस्थित उपलब्धिमूलक बनेना सामुदायिक और संस्थागत विद्यालय में गुणस्तरीय एवं समावेशी भौतिक संरचना निर्माण करके तीनों तह के सरकार संगे मांग करती प्रविधि के दुरूपयोग से होना हिंसा और दुर्व्यवहार के अंत्य के लग प्रभावकारी कानूनी शैक्षिक संरचनागत सुधार के पैरवी करना घोषणा पत्र में उल्लेख कर गिलवा। खोजखबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाद से फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टिकाप्र एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
3: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
4: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बालश्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
3: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीकै मोहनियाल गाउँ कार्य समितिकै सभापतिमा महेश विष्ट चयन हुलबाट अटवारके हुल महाधिवेशनकै उपसभापतिमा दम्बर पौडेल, सचिवमा भूपेन्द्र चौलागाई हो, सहसचिवमा कौशिला सार्की चयन करलबा। महाधिवेशनमा धनगढ़ी उपमहानगर के समितिकै सभापतिमा तुलाराम खनाल, उपाध्यक्षमा रेखा धानुक ओसके, सचिवमा नरेन्द्र पडाल, सहसचिवमा वीरेन्द्रनाथ चयन हुलबाटै गोदावरी नगर कमिटिकै सभापतिमा आशिष धामी, उपसभापतिमा गंगा दत्त जोशी, सचिवमा रमेश ओली, सहसचिवमा भीष्म खड्का चयन हुलबाटै लम्की चोहा नगर कार्य समितिकै सभापतिमा नामकरण खनाल, उपसभापतिमा हीरा सिंह भूल, सचिवमा धर्मराज देवकोटा चैनहुलबाटै अष्टके भसनी नगर समितिकै सभापतिमा भरत बहादुर साउत उपसभापतिमा गीता चौधरी हो सचिवमा ज्ञान बहादुर रावल चैनहुलबाटै अष्टकर्के टिकापुरके नगर कार्य समितिकै सभापतिमा रविन्द्र विष्ट गौरी गंगा कार्य समितिकै सभापतिमा आशिष सिंह उपसभापतिमा हीरा प्रसाद अधिकारी सचिवमा गोकुल कुवार सहसचिवमा विमला भत्ता चैनहुलबाटै उष्टका घोडाघोडी नगर कार्य समितिकै सभापतिमा नारायण भण्डारी जानकी गाउँपालिकाकै सभापतिमा कलावती चौधरी जोशीपुर गाउँपालिकाकै सभापतिमा विनोद कुमार चौधरी बर्दगोरिया गाउँपालिकाकै समितिकै सभापतिमा केशव भण्डारी कैलाली गाउँपालिकाकै सभापतिमा रेवन्त बोहरा चुरे गाउँपालिकाकै समितिकै सभापतिमा सुनिल बोहरा मोहन्याल गाउँपालिकाकै सभापतिमा महेश विष्ट चैनहुलबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कैलालीकै सभापतिमा महेश चौधरी पार्टीकै पालिकाकै कार्य समिति गठन हुसेक्लक कोषाध्यक्ष पदमा कार्य समितिकै बैठक से मनोनित गर्न जानकारी दिले बाटै यी वर्षाकै मनसूनकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशकै 33,000 से ढेर नागरिक प्रभावित हुन अनुमान कर्गिल बा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिमकै अनुसार बाढ़ पहिरो दुबान जैसिन विपद से प्रदेशकै 7,633 घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन आकलन कर्गिल बा मन्त्रालयकै विपद सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीकै अनुसार करिब 33,227 जने नागरिक विपदकी जोखिममा रहलबाटै यी वर्ष तराईकै कैलाली कञ्चनपुरमा समेत मनसूनसे सबसे ढेर प्रभावित हुन अनुमान कर्गिलबा जहाँ लदिया कटान डुबान बाढ़कै मुख्य चुनौती रहल बतुवा गिलबा पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा डुबानकै जोखिम कम रहलसे फेन पहिरोकै सम्भावना उच्च रहल मन्त्रालयकै निष्कर्ष रहलबा विगतमा जथाभावी सड़क निर्माण हो कमजोर भू बनावटकै कारण समन्वय समेत वर्षमा भारी पहिरो जाइसक्ने अनुमानका आधारमा यी वर्ष फे पहाड़ी जिल्लामा उच्च सतर्कता अप्नाइपर्न धामी बटोले बाटै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विपन्न वर्ग हुक्रा निशुल्क शिक्षा औ स्वास्थ्य सेवा देन सरकारकै योजना रहल बटोले बाटै प्रतिनिधि सभाकै कालिक बैठकमा सांसद हुक्रा के प्रश्न के जवाब देती वहाँ ऐसिन बटोले खुवाई प्रधानमन्त्री शाह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के सांसद परमेश शाह के समेत प्रश्न के जवाब देती वहाँ नेपाल विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति हुईती करबेर व्यापार निर्यात गर्न औ वस्तुमा लग्न कर छूट लगायत के विषयमा फेर ध्यान देह पर्न हो नेपाल अब निर्यातमुखी हुई पर्ना सोच सहित के स्तर उन्नति हे कुछ वर्ष पाछे सारे सेक्ना कहल बटोले बाटै नेपालमा उत्पादन हुइलाग चीज तमाम राष्ट्रमा निर्यात गर पैना कहनक लाग दुई वर्ष के लाग यी पाचक सार्गिलो हाल आत्मविश्वास बढ़ैना सेफे समेत देश भारी रकम चाहल बटोले बाटै उहाँ शिक्षा हो स्वास्थ्यमा विपन्न हुक्रन 10% निशुल्क सेवा देना नीति समेत अपना हुक्रा देशभर लागू गर्न खोजल वस्तके अवगत कराइल बटोले बाटै प्रधानमन्त्री शाह संविधानमा समेत निशुल्क शिक्षा औ स्वास्थ्य कहिके लिखल सफिन सरकारकै बजेट सीमा बीचमा समेत कम्तीमा विपन्न वर्ग हुक्रन निशुल्क शिक्षा औ स्वास्थ्य सेवा देन सरकार औ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाग परल स्पष्ट पर्ल बाटै राष्ट्रिय सभाकै कालिक बैठकसे प्रतिनिधि सभा मनसे सन्देश सहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक 2083 मतदाता नामावली संशोधन पहिल संशोधन विधेयक 2083 पारित कर्गिल बा प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहकै ओरसे कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सविता गौतमसे पारित करी कहना प्रस्ताव प्रस्तुत करलक दुरु विधेयक सभा से पारित करगिले खो या आगे प्रतिनिधि सभा मनसे सन्देश सहित प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिल संशोधन विधेयक ओ मतदाता नामावली पहिल संशोधन विधेयक उपर दफावार छलफल बताएगिलबा विधेयकमा छलफलमा उठल विषयमा जवाब देती कानून मन्त्री गौतम से समावेशी प्रतिनिधित्व संबंधी संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको क्रममा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाटै मन्त्री गौतम मधेसी दलित पिछड़ समुदाय तथा अपाङ्गता रहल व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नपर्ने विषयमा सकारात्मक रहलो यम्न यह मर्म विधेयक के समेत मूल व्यवस्थामै समेत गेल दावी गर्नबाटै यी बीचमा राष्ट्रिय सभामा पहिल महिला समन्वय समिति गठन हुइल्बा कलशे सभाकै बैठकमा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालके प्रतिनिधित्व समेत गर्न सकु दलके समन्वयमा महिला समन्वय समिति गठन गर्न सभामा गर्पना प्रस्ताव हे सभासे सहमति देलक बतवागिल्बा वहाँ राष्ट्रिय सभामा नियमावली अनुसार लैंगिक मामिलामा समान धारणा बनाइन तथा एकर धारणा हे बहस पैरवी मल्लन नकलाक सभामा प्रतित्व गर्न सकु दलके समन्वयमा महिला समन्वय समिति गठन गर्न जानकारी करागिल्बा। खोज खबरमा एघरी विश्राम पाछ फेरसैबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिगाप्र एफएम।
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
0: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली हुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पाछ फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्न निर्णय गरल बा। असिके प्रदेश सरकार के आज के मन्त्री परिषद बैठक से निर्णय गर्न कलक हो। सभा के बैठक आज दोपहर के 3 बजे बैठना कार्यसूची रहल बा। सभामा प्रदेश प्रमुख नजीर म्यासे प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न कार्यक्रम रहल बा। अटवार के बैठक से सुदूरपश्चिम प्रदेश विकास परिषद मन से पारित दोस्रो पंचवर्षीय योजना के मसौदा हे समेत स्वीकृत करती अटवार से लेकर कार्यान्वयन में लड़ना निर्णय करल बा। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग से तैयार करगिल योजना पहल पंचवर्षीय योजना के समीक्षा संघीय सरकार से 16 योजना संविधान में समेत एनएम में समेत आर्थिक सर्वेक्षण तथा सरकार वाला हुकन संघ के छलफल के आधार में दूसरो पंचवर्षीय योजना मसौदा तैयार करना कहल बा। ओ राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने सोमबार समेत भारत भ्रमणमा जैना कहलबा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन के निमन्त्रणामा सभापति लामिछाने जेठ 18 गते से लैके भारत भ्रमण गर्न राष्ट्रपा से जनाइलबा। पार्टी के समेत अखबार के जारी कल प्रेस विज्ञप्ति अनुसार भ्रमण के क्रममा सभापति रवि लामिछाने भारत के नयाँ दिल्ली मा उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट गर्न कहलबा। कलशे साथे अयोध्या के भ्रमण गर्न कार्यक्रम समेत रहलबा। सभापति लामिछाने सँगै राष्ट्रपतिकी सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विपिन कुमार आचार्य सचिवालय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक बोहरा निकिता पौडेलो प्रदीप आचार्य सहभागिता रहन कहलबा। राष्ट्रपतिकी प्रवक्ता मनीष झा से जारी कराल विज्ञप्ति अनुसार नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के सभापति लामिछाने के समेत उच्च स्तरीय भेटवार्ता केला आवश्यक समन्वय हुइटी रहल बा। राष्ट्रपा से उभ्रमण से नेपाल भारत सम्बन्ध तथा दुई देश के राजनीतिक दल हुकन बीच समेत के संवाद थप सुदृढ़ बनैना सहयोग पुग्न अपेक्षा करगिल बा। यह बीचमा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से अपन प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारी हेफे तीव्रता बनी थी। मूल आयोजक समिति गठन करल बा। पार्टी सभापति रवि लामी छाने के अध्यक्षता में गठन करगिल समिति के आगामी महाधिवेशन है व्यवस्थित प्रतिनिधिमूलक को संगठनात्मक रूप में समेत सुदृढ़ बनाने लक्ष्य लेहल बा। नेपाली पुरूष क्रिकेट टोली के समेत चीन विरूद्ध के खेल में 20 ओवर में 113 रन बनाईटी विशाल योगदान खड़ा करल बा। नेपाल के समेत चीन विरूद्ध के खेल में एक समेत इनिंग में कुल 29 छक्का प्रहार करती सर्वाधिक छक्का के विशाल कीर्तिमान बराबर समेत करल बा। नेपाली बैटर कुशल भुर्तेल से एक ओवर में 6 छक्का प्रहार करती बाउंड्री से समेत सर्वाधिक 116 रन के लौवा राष्ट्रीय कीर्तिमानी बनायल के हों। अस्ता के रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी से समेत गुजरात टाइटन से 5 विकेट से हितैटी आईपीएल में 2026 के उपाधि जीतलवा। अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में अतवार के हुई फाइनल में जीत निकलती आरसीबी से अतवार के दूसरा पदक उपाधि जीतल के हो। जीत संगे आरसीबी आईपीएल इतिहास में लगातार 2 सीजन के उपाधि जीतना तेसरा टोली बनलवा। कलसी आगे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस में समेत ऐसी उपाधि हासिल करल बता गिलवा। ये समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका की टीकापुर के तमाम मेयर के सचेतनामूलक कार्यक्रम करती मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन तथा आत्महत्या रोकथाम संबंधी कार्यक्रम आगे सरती। पश्चिमी स्थानीय वायु के प्रभाव कायम देश में तमाम स्थान में मेघगर्जन सहित के पानी पर्न संभावना। मनसून के कारण स्वरूप पश्चिम के 33,000 से ढेर नागरिक प्रभावित हुई अनुमान। विपद पूर्व तैयारी में जुटल तटीय क्षेत्र के वाड़ाहुकराओ नागरिक सचेत बनती। ओटी 20 आई में 2 पटक 300 रन कटैना नेपाल पहिल टीम बेंगलुरु है लगातार दूसरा पटक आईपीएल की उपाधि। लेटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयत्न सुनते भी राम राम।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि इन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आई दौड़ती आ गई है भौजी कहाँ बाटी
1: ओ गोंडे में सुटल बाटी बाबू चोली न भरिए
0: भौजी कहाँ से काटन अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनैल बाटी तर फिर काटी तू जा रहा अपना
2: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो कर बाटा कटा बेर में हो
0: ना ते भौजी हमारा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिंस रेगी को नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे ठीक ठाक नगर के मोटरसाइकिल बाकल अच्छे उहे में बैठा कर भौजी है ना सर पड़े से उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला पे खैला जात फे दिए न्यू इतना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम गेरेमेन कुछ से खवाई ली हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए लाख सपवा कटलक अंगन स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से सफल करा दी बेरमिया अपेले से झन समस्या बिना बिल कोशित बेरमिया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खब ना फिर कठ असिक कर से रक्त संचार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
7: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
8: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
6: डेलिभरीका लागि
8: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
6: टिकापुर कैलाली
9: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
10: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका अनसे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 और 9846139161
2: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
3: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
2: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
3: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
2: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
3: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कही एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ले धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेन्सन मा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर मा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848528

0: राम ई लड़का के कब्बू कापी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ई बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
0: सुनो कि नहीं वहाँ नंदी घोज आगे ना अब समय एक ठो घर गहना नहीं हो बनाई ना उन्हें ना पट्टा नहीं पहना था
3: अरे गहना बनाई ना तो हो दुकान खोजती खोजती परेशान आतू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुम्हार बाट अस्तर तुम्हार रामपुरान दीदी का ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुगर बना कर लाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाट वाट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684-41208 और 98486-39261

जयगुरु बाबा घर घर के आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम निशाना के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मेघर श्रोता संघ स्वागत के संगे अभिवादन कर मिशन अमीके बैठक में बैठक के साथ देखते बाबू रत्नापुर मगर और मई बाटो अपने संघ्या मैमिशन संघा कसिन बा हाल खबर बेकल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं फिर एकदम आराम बाटो अपने को फिर एकदम आराम हुई भी तना भरपूर आसने बाटो जे जहां हुई भी खेत में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में बिपटाइल में यात्रा में जे जहां हुई भी वह ठाव से हम कॉल कर भी और कार्यक्रम में निशाना लगाए लगा भी जनौनी कह कूद दिमाग खे न प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज नासन पुरखौली हुकन के शीर संपत्ति झलकना मेरा एक प्रश्न चाहे हमारे कथी हो प्रश्न के जवाब दे अपने एक प्रणाली पहले जन्मी तो दोसरो जन्मी तो तेसरो तीन सौ जन्मी कर से कार्यक्रम के विनर हुई भी विनर है एक विजेता घोषणा करती हमें 100 रूपये के रिचार्ज कार्ड देखी पठी थी यहां से कह पल तो अपने जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई मौसम सुहाना बा पल घड़ी रमाइलो बा रमाइलो सुहाना मौसम में अपने हमारे रमाइलो गब्बा का नाम जानकारी करती कार्यक्रम में एक रमाइलो गीत जोड़ा गीत के पास समय नहीं बांटू डायल करते कर भी सुनने 91.5 61.255 लाइन खुलेगा

बिल्कुल ही रमाइलो गीत जोली कार्यक्रम में एकदमै मन पर्ने गीत मौसम व्यवस्था जस्ते वा गीत व्यवस्था सुन ली हम एकदमै रमाइलो महसूस हुए। अघि कार्यक्रममा सहभागी जनाई 091-5-61-255 अथवा 091-5-61-255 लाइन एकदमै खुल्ला भए कार्यक्रममा सहभागी जनाई भी अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गफ रही विशेष करके निशाना लगाइना हो निशाना लगाए लगा अपने के हमारे कार्यक्रममा सहभागी जनाई भी 091-5-61-255 अथवा 091-5-61-255 लाइन एकदमै खुल्ला भए डायल कर भी कर से अपने को हमारे रमाइलो गफ रही का नाम है अपने जानकारी करती बात हूँ। तो कार्यक्रम में इटे कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता थी रमाइलो गफ रही का नाम है अर्जी अनुरोध और निवेदन करते कार्यक्रम में जही सहभागी जनाई कर भी करीब करीब 1:45 बजेसम अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता थी रमाइलो गफ रही रमाइलो बातचीत थी फटाफट चाहिए डायल कर भी कार्यक्रम में आई भी का नाम आप लोग कहना चाहता हूँ। तो डायल करते कर भी सहभागी जनता कर भी तब समय फैन से हमारे रमाइलो रमाइलो गीत जोड़ गीत के बाद समय फैन से ठाव रमाइलो गीत जोड़ी गीत के बाद समय आने बात हूँ।

हजुर बिल्कुल रमाइलो गीतकै पाछा फेर्छ स्वागत भयो कार्यक्रममा कार्यक्रममा बाटो मिसन अमिके भाइ साथ देखे बाबु रत्न पुनमगर औ यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz पछिकै हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो क्यामेरा सुन्ती बाटी जे जहाँ भी खेतवा में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रहे से फैन कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे कर भी कार्यक्रम में ऐटे कर भी अपने को हमारे रमाइल सहभागिता भी करना मैं आप लोग जानकारी करती बारो कार्यक्रम में आईवी कल से एकदम सही और सकारात्मक तरीका से कार्यक्रम में सही सहभागी जन भी आईवी का नाम निवेदन करम विशेष करके अपने हुकन और अपने हुकन के संगे हमारे सही मजा से गप हुई रमाइलो गप हुई का नाम आप लोगों को कहना चाहम तो फटाफट चाहिए अपने हुके हमन चाहिए डायल करते कर भी 091-5-61-255 अर्थात 091-5-61-255 लाइन एकदम खुला बा का नाम आप लोगों को जानकारी करती बाटू डायल करती रह भी 091-5-61-255 के लाइन खुले बा कहती 1:45 बजे समय यात्रा कर भी संगे संगे का जानकारी करती जनौनी कह कुछ दिमाग खेना प्रश्न थारून के लिखित दस्तावेज नासवान पुरखौली हुकन के शीर संपत्ति झलकना मेरा एक प्रश्न लेके मैं अपने हुकन के संगे बाटो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनते कर भी ठाकुर जोड़ी गीत के बाद समय ऐने बाटो डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलेगा

0: हजुर, झुमे धरती गगन गाए पानी पवन, रमाइलो गीत जोडी कार्यक्रममा एकदमै रमाइलो गीत रहे। जस्तो मौसम बावस्ते अस्ति यहाँ टेक्नी बेटके बाबु म्युजिकल फाइल क्लिक गर्दैबाटै रत्न पुनमगर बाबु एकदमै सुहाना सुहाना मेरा गीत हाम्रो आफ्नो सुनाइदिएबाटै एकदमै रमाइलो महसुस हुन्छ। ओके, हाम्रो कार्यक्रमको मध्य मध्य समयमा पुगेबाटै के छ हाम्रो व्यापारिक विश्राम हो, व्यापारिक विश्रामको पास समय नै बाटो रेडियो सरको कहौँ पहिना जेबी डायल गर्दै गर्दै 091-5-61-255 लाइन खुल्दै भयो।
1: रजनी वहाँ 62 नंबर लक्ष्य बात देखा होता लिखा होता
2: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं
1: एक तो टपा का मुर्गी में फा रखे लक्ष्य से डूरे से बक्सा की आनो हारी
2: छापन घिस्टा चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस आकर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगई दी
1: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाई खोज लखो का
2: आरम में कीड़ा फटिंदा मुँह साफ सीर नीचा कर कहीं फलाम को जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती पुगाई नहीं थे कि बेन अपना न दासी दूर रिना
1: हो बिना तो क्या करना हो तपा देखती कि डर नागर लग्न रही देव तपा तो अपन घूम का बारी वो कल गिनता
2: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुकर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग शाम दस न कर था
3: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाए वा नी जीस के साप मन देख डरे था निचलाख दूर रहे साप नि डस्ट तर हुक्र खैना खुवाज बाहिर निस्कन घाँस काटा बेल ख्याल बेल ड्याङ्ग बेल छुबेको छ मनै मही मार्गबाट कना सबस पट्टी रक्षा कना क्रममा साप दस लाग रह मनै सापन व्यक्ति कि मारक लाग रह ओसीको कर बेल फेर साप दस लाग रह
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लङ्घक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँबाटै छ पत्ता लगाएको लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेभिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
3: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
2: डेलिभरी का लागि
4: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: संपर्क मोबाइल नंबर 98017 10672।
3: स्वास्थ्य का लागि पानी

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহাঁ আপন অনুহার বিগড় কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহাঁ পাঠাই তো। ইহাঁ হেল ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুইটাওই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা যাইবে তো সমাধান হই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগড় কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্বিহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुस्ता तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुंजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: ए बा आई गई क्या? आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आए की होली मेरी चेली।
5: तनखा खाईकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन के ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भन्या बुवा, पहला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
4: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यस्तो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
5: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01597021772 मि सम्पर्क हर्या।

0: गली भाई करी बिचारी तो घर पे
1: बाबू पानी
0: हम फिर टूर ला दे ना
2: बरबर वाला
3: असो बरा बढ़िया भी यार बावे ना बरे जूर बावे ले वो हर भाई फुगा दो
1: ले भैया फुगा दे
0: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखास्ते हो है।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लगभग
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाटा पोछी नो कला से मई टॉर्च लाइट और लट्ठी दिए तू लेखा जावो
1: काचे चुनो लट्ठी और टॉर्च लाइट
0: का करो रही दाई राटिक डाला बाहर निकल पड़ला से वाटवाइनिक जाए पड़ला से जहाँ फिर टॉर्च लाइट बार खा वो लम्बा लट्ठी देखा के ना जाए पड़ता का करा की बरखा छेक बा सांप रह सक था टॉर्च का उजाले सांपन दिया खा सक था वो लट्ठी ठेक ठेक आओ सुन खा सांप भग ठगा
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूली मैडम सर नुकर सांप नुकर सितना ठाउसी न्यांग पड़ला से वो काम करो पड़ला से जहाँ फिर ठप होशियार रिपोर्ट था गई खा सिखेला बात का आम छेटवा जुहा झपा अथवा ध्यान घर चलक ठाव में न्यांग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पठा गई खा कल बात
2: सात बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन परे ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना पिला कुर से सुखा ठाव का खोजी में उपरा बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
6: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
5: पढाइ हुने विषयहरू
7: अनिवार्य नेपाली,
5: अनिवार्य अंग्रेजी,
7: सामाजिक गणित,
5: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
7: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
5: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
7: कम्प्युटर विज्ञान,
5: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
7: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
5: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
7: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
5: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
7: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
5: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
7: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
5: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
7: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
5: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
7: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
5: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
7: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
5: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
7: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
5: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
7: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
5: CCTV निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
7: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
5: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ।
7: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
5: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
7: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
8: ए सन्त्यकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्यु त आएको छ, कसो हो त जाने विचार छ कि नै त?
9: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइजन पन भएन, जाउँ भने भयाको मङ्गलसूत्र पन भाँची गयो।
8: यो टिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको है, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त छाट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
9: आज त सन्त्यका बाले मनकै कुरो हर्यो, ठोट त बाइजाउ।
10: सामुएल ज्वेलर्स, सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर टिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 98 68 44 12 08 98 486 39 261।

0: పూజా పుణ్యకు పానీ
1: सामुदायिक एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम सविता देवी ताम्रकार, नमकी चुवा नगरपालिका।
2: भ्रष्टाचार करू या मनै खुल्के विरोध गरी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबै जाने सहयोग गरी। अपराध दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्य महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। ओसीएमसी, स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने थेनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
5: ए रुक रुक रुक,
6: के भयो, किन कराएको यस्तो
5: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र?
6: 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे,
7: इन्टरनेट डेटा पनि कॉल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्ले मा हलिउड र बलिउड मुभीज को फ्री एक्सेस पनि
5: हो नि। एनसेल मा अब मात्र 799 मै सबै अनलिमिटेड।
8: ओहो, आज यो सुपर भ्यालू प्याक *123 हैश डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस्। एनसेल नेपालकै लागि। स्वीकार गरेर दुईटै पक्ष

0: सामुदायिक रेडियो टीका पूर एफएमके संजीव 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने उपरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्र ओ नेपाली पात्र मा फेसुन्टीहरुबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कैलाली के टीकापुर जानकी किसान के बारी में फलक तरकारी खैना योग्य बढ़ी किसान दरेक में जीप दुर्घटना 3 जना की मृत्यु 5 जना घाइते प्रधानमंत्री शाह के व्यक्ति की विरोध करती राष्ट्रीय सभा की बैठक स्थगित पश्चिम स्थानीय वायु के प्रभाव कायम देश के ढेर सीन ठाव में मेघगर्जन सहित वर्षा की संभावना कैलाली के टीकापुर जानकी के किसान हुकुन के बारे में फलक तरकारी खाना योग्य पाइल विषादीय अवशेष दूर विश्लेषण प्रयोगशाला इकाई अतरिया टीकापुर जानकी व्यावसायिक रूप में खेती करती हल 14 किसान के बारी में तरकारी के नमूना संकलन करके कार्बोमेट्रो अर्गेनिक नोफेसफेट समूह कीटनाशक विषादी परीक्षण कलक तरकारी खाना योग्य पाइल प्रयोगशाला के प्राकृतिक खेती करती रह तरकारी के खेती करना किसान हाट बजार में बिक्री में धरल तरकारी के नमूला संकलन करल रही प्रयोगशाला के खीरा हरियर फर्सी भिंडी करेला लौका मिर्चा गोलभेड़ा तरबुजा बोड़ी घिरौला बंदगोभी लगाये के तरकारी परीक्षण करल रही तरकारी में कार्बोमेटो अर्गेनिक नोफेसफेट के लिखेल रहे तरकारी में कार्बोमेट के रोकावट प्रतिशत 4.67 समय अर्गानोफोफसफेट अन्य तरकारी में रोकावट प्रतिशत 9.8 समय भेटला रहे बोडी में 33.37 रोकावट प्रतिशत भेटला अर्गानोफसफेट के प्रयोग 35 से कम रोकावट प्रतिशत हुलक खाना यज्ञ रहे तैयारी ओकोफर हुलक स्वास्थ्य कला खाना अज्ञ हुना विषादी अवश्य दूत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाई अतरिया के नायब प्राविधिक सहायक राजेन्द्र प्रसाद भट्टाई बुटिलो भट्ट के अनुसार रोकावट प्रतिशत 35 से कम हुए से उपभोग करना योग्य 45% हुए से कुछ दिन क्वारेन्टाइन में धरा पर्ना हो 45% के ऊपर देखला घोठा में विसर्जन कर पर्ना हुआ मानव स्वास्थ्य हो माटी के संरक्षण के लिए किसान हुकन विषादी रहे तरकारी खेती कटी गुड नेबर्स इंटरनेशनल नेपाल के सेवक नेपाल कैलाली के साझेदारी में एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती के टीकापुर जानकी ओलंकी छुहा किसान सकैटी रहल परियोजना के स्वच्छ माटी सुरक्षित बाली हो स्वास्थ्य जीवन केला परियोजना के प्राकृतिक खेती अभियान में रूप में लेल 3 वर्ष से संचालित परियोजना में हिंसाघ 300 किसान आबद्धरल के वर्ष थप 300 से करके 600 किसान 50 बीघा जमीन में प्राकृतिक खेती करती किसान हुकन आवश्यक बी बीजन कृषि सामग्री और तालीम दलक करगिलवा किसान उपभोक्ता के स्वास्थ्य ध्यान में धरके विषादी रहित तरकारी बजार में पठटी रहें किसान हुकन आयोजन में समेत सहयोग खुला परियोजना के क्लस्टर कोर्डिनेटर अरूण चौधरी बोटिलो अस्तंक खेती करती रहल किसान एक ठो सीजन में लाख आमदनी करती रह परियोजना के खेती कलक 4 सीजन तक छाप धरना बिना खनजोत व न्यूनतम खनजोत कम्पोस्ट मल प्रयोग करना सूक्ष्म जीव के वृद्धि करना कार्य प्राथमिकता देना कल परियोजना के किसान जिम्मेवार बनेना समय समय खेती कलक किसान के तरकारी में विषादी के लिख समेत परीक्षण करना कल जानकी गांवपालिका की किसान पशुपति चौधरी विगत तरकारी में अंधाधुंध विषादी छरहुना आजकल 2 कट्ठा में तरकारी लगलग पशुपति आजकल पिना गोबर मल छिटकेनौ जैविक मल बनेना परियोजना के तालीम लिहल पास सचेत हुईना हुई बारी में फलक तरकारी कुछ खैना बेचना बिक्री कल सफे घर खर्च चलेना हुई जानकी गांवपालिका कृषि प्राविधिक चक्र प्रसाद भाट उपभोक्ता के आकर्षक तरकारी मन परिना विषादी पलक तरकारी में दा किरा लग्ना हुलक उपभोक्ता सचेत विपन्ना बुटी विषादी न्यूनीकरण और सुरक्षित खाद्य तत्व संरक्षण के किसान सचेत विपन्ना आवश्यकता रहलबा माटी की उर्वरा शक्ति बढ़ना बढ़ी उत्पादन लेना हो जैविक जीवाणु संरक्षण तथा स्वास्थ्य तरकारी उत्पादन में जैविक प्राकृतिक खेती में लग्न आवश्यक विज्ञ हुकुन के सुझाव रहलबा दैलक में हुलक जीव दुर्घटना में 3 जना की मृत्यु हुआ दुर्घटना में पर्के गंभीर घाइती हुलक 3 जना चिकित्सक के मृत घोषणा कल मृत्यु हुना में जीव चालक कालीकोट के शुभ कालिका पास के 35 वर्षीय कल बहादुर रोकाए ओहठाउ के 39 वर्षीय मित्र सुनार सुहकाली की छ के 60 वर्ष पुती सराबी करहल सुर्खेत मस्के कालीकोट की शुभकाली का गांव पाली का जैती कलक सु प 01001 4949 नंबर के जीप दैले के भैरवी गांव पाली का साथ काल गौड़ी में दुर्घटना हुई रह सोमवार दिन के हुईलक दुर्घटना में पर्के गंभीर घायती हुईलक वहां उपचार के लिए जिला अस्पताल दैलक पुगल रहे तर अस्पताल में वहां उक्र मृत घोषणा कलक जिला प्रहरी कार्य दैलक के डीएसपी शरण कुमार वी का जानकारी दिल वहां के अनुसार मृतक तीन जना के सब जिला अस्पताल दैलक मधरल दुर्घटना में पर्के गंभीर घायती हुईलक दुई जना थप उपचार के लिए कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठेलक डीएसपी वी का जानकारी दिल शुभकाली का चार के 45 वर्षीय नयन सुनार वडा नंबर 6 के 27 वर्षीय सुमत वी कहा थप उपचार के लिए प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठेलो अन्य घायते तीन जना जिला अस्पताल दैलक में उपचार हुई रह थप अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय दैलक के प्रमुख डीएसपी शरण कुमार वी के कमाण्ड में 5 जना के टोली घटनास्थल में पुगल बा खोज खबर में एक विश्राम विश्रम पांच फिर से विश्वी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफे शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423359
0: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा राष्ट्रीय सभा की आज बैठक में सांसद थुक्रा आइतबार के प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रधानमन्त्री वीरेन्द्र शाह दिलक अभिव्यक्तिको विरोध जारी धरती राष्ट्रिय सभाकी आज बैठक स्थगित हुआ बैठकमा सांसद थुप्रो नेपालमा फेरि भारतकी सीमा मिथिला सेफे प्रधानमन्त्री दिलक अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रलकती सच्चैना महाकलबाट बैठकमा राष्ट्रिय सभाकी अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ढेरोसिन माध्यमसे प्रधानमन्त्री शाहकी ध्यान आकर्षण गर्के यस समस्याकी हल धरती सभाकी सञ्चालन निरन्तरता दिन आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सांसद थुप्रो अनुरोध गर्नुबाट अध्यक्ष दाहाल सांसद थुकन राष्ट्रिय सभाके देशकीय राजनीतिक क्षेत्रके अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न हुलक यस संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा संकटकी समाधान खोज्न सभाके छलफलमा निरन्तरता दिन आभिन बढ़ी आवश्यक रहल समेत बुटिलोबाट सांसद थुक्र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा देलक अभिव्यक्ति सचेना माग धरती विरोध जारी धरपाथ अध्यक्ष दाहाल सभाके दोस्रो चौ बैठक बैठकले स्थगित गर्नबाट राष्ट्रिय सभाकी औरो बैठक जेठ 19 गते मंगलबार 1:15 बस्न अघिबाट प्रतिपक्षीय दलके सांसद थुक्र नेपालकी भारतकी भूभाग मिसलक विषयकी प्रमाण संसदमा पेश कनम महाकल्लबाट, प्रतिनिधि सभा बैठकमा आस्के सुम्भा धारणा धरती सांसद उग्रह महाकल्लबाट, राप्रपाके सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, देशके सर्वभौम विषय, भूमिके विषय, गम्भीर विषय हुलक, अचुवाके भर्म अभिव्यक्ति दिना गलत हुन उहाँको रपोटिलोबाट, उहाँके सभामुख दोल प्रसाद अर्याल मार्फत सरकार नेपालकै मिसलक भूमिके प्रमाण पेश गर्न आग्रहकलबाट, श्रम संस्कृति पार्टी सांसद आर्यन राई, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी आइतबारकी प्रतिनिधि सभा बैठकमा धरलक धारणा गम्भीरलक यही विषयकै प्रमाणित सहित जवाब दिन महाकल्लबाट, उहाँकी जवाब नैदेलसम्म बैठक सुचारू हुन नैदिन बुटिलोबाट, नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक केन बहादुर महर, भारी संघर्ष बलिदान केलनलक उपलब्धि हुलक, उमह खिलाफमा जैना छुट्ट गौरधान फिर्ने हुलकटी, प्रधानमन्त्री धरना भूमिका मिसलक धारणा संवेदनशील हुलक जवाब दिन महाकल्लबाट, नेपालकी भारतीय भूमि मिसलक विषय भारतको दावी नैकलक अवस्थामा देशकी प्रधानमन्त्री वकर धारणा धरना देशकी हित विपरीत उहाँ टिप्पणी कलबाट, प्रधानमन्त्री बोलक धारणा सांसद रेकर्ड मसी हटाएसकी उहाँ महाकल्लबाट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपतिकी सांसद इन्दिरा राणा मगरह प्रतिपक्षी सांसद उग्र धरलक धारणा नियमावली विपरीत रलक धरती सभामुखी ध्यान आकर्षण करेलबाट, नेकपा सचेतक युवराज दुलाल देशकी कार्यकारी प्रमुख कूटनीतिक भावना विपरीत धारणा धरलक बोटेटी सचेना महाकलबाट, प्रधानमन्त्रीकी धारणा देशवासीमा गम्भीर आशंका पैदा कलक उहाँ टिप्पणी कलबाट, विपक्षी दलकी सांसद उग्र बैठक आग्रह नै बढेन सभामुख संघ आग्रह कलबाट। खोज खबरमा फेरसै विश्राम, विश्राम पाछा फेरसै विश्वतिर विशाल मुदायक रेडियो टीका प्रएफएम।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
5: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहना हो का?
4: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, पटा सुगुर बनेला बाट, आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543326।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
6: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825677772।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा। हाल नेपालकी मौसममा धेरैसिन वायु प्रणालीकी मिश्रित प्रभाव देखिबा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी अनुसार अब नेपालकी उपल्लो वायुमण्डलमा रहला पश्चिमी निचापी रेखा ट्रफ स्थानीय वायु तथा पश्चिमी पूर्व सम नेपाल घरलत निचापी रेखाके प्रभाव सक्रिय रहलबा यही मौसमी प्रणालीकी कारण हाल कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशकी हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा साधारणतया बदली हुलबा देशके बाँकी तराई क्षेत्रमा फेरि आंशिक बदली लागलबा। अब कोशी बागमती कर्णाली प्रदेशकी कम ठाउँमा तथा गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेशकी दुई ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कासी मध्यम वर्षा हुइटिरहल महाशाखा जनेलवा। आज सोमबार फेरि देशभरकै मौसम मानसिक स्थिति साधारणतया बदली रहने अवस्थाले गिल्बा। देशकै हिमालय पहाड़ी भूभागमा साधारणतया बदली लग्लछ फेरि तराई भूभागमा आंशिक बदली हुनावा। यही अविधिमा कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशकै हिमाली तथा पहाड़ी भूभागकै कम ठाउँमा मौसम बिग्रन सम्भावना बा। महाशाखाकै अनुसार ओ क्षेत्रकै संघ कोशी लुम्बिनी प्रदेशकै तराई भूभागकै एक दुई ठाउँमा मेघगर्जन ओ चट्याङ सहित मध्यम सम्मकै वर्षा हो हिमपातकै सम्भावना रहल्बा। कैलालीकी टीकापुर जानकी किसान हुक्र बारीमा फलक तरकारी खैना योग्य छ से छेदीहरू बढी किसान प्राकृतिक खेती गर्थे। दैलोमा जीव दुर्घटना तीनजनाकी मृत्यु पाँचजना घाइते। प्रधानमन्त्री शाहकी अभिव्यक्तिकै विरोध गर्थे राष्ट्रिय सभाकी बैठक स्थगित। उपस्थिनीय सिनेबाईकी प्रभावकैमा देशकी ढेर सिन्थामा मेघर्जन सहित वर्षाकी सम्भावना। गीताबुकला खोज खबर अथवा प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद डेटी आबुकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हेटो एगर पास छ बजे खोज खबर सुन्न सिक्दी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम।

0: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
1: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्तशास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
1: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
0: भर्ना शुरू जेठ 3 गतेदेखि,
1: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
1: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
0: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
1: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
0: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
1: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
0: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
1: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
0: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
1: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
0: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
1: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
0: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
1: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
0: CCTV निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
1: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
0: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
1: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
0: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
2: नाता छवा साँप कुछ नहीं कराई सम साँप कुछ नहीं करता लिया वो अपन ही चल गई था कुछ कराई था वो सब कुछ साँप बिखा फिर नहीं रहता
3: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी नाई
4: लिया नेपाल में पा दिना बिखा साँपन का विषय में सुन एक थोड़ा ठह गई था जो उन खास कह कर रात के समय में घर भीतर बैठा से कटल से निबाई फिर सियाकर तर कटलक पास देह भाग जो निचलना कह सास फैर जो निशेकना में से लक् हो सकता और डोम जो बड़ा रिसहा मेरी रथ निकर फाट फूले डोम साँप दिन व रात दुनू में देख पड़ना वो खास कह कर संध्या बिहान देख पड़ निकर कटल से फिर लक्व हो सकता वो और कैरी जाटक साँप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाची होकर रकत बहना हुई से था उसे कह हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप 10 लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा।
5: बर्खा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढूर मिला कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाश विदे सापन का दसाई का घटना ढूर मिला कर लग पा दे
6: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा 10 डाल कल ऐसी तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
7: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिने सक्दै छ।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
9: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठभन्दा सस्तो, देखिनामा पनि राम्रो अल्मुनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
10: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
9: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
10: अब त म ढुक्क।
11: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
9: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाड़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोका को लागि काठ का पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महंगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
0: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
0: अब त म ढुक्क
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टीकापुर कैलाली

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: काहुल बाबू अपने कल का लाइट रही अपना काकर कल का लाइट रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाल बाटी
1: सुनिए ना दादू हमरा दुनू जना कोना में घास काटायल रहल है मर संग हमें सब पका दल नहीं ना दादू हाली का करना हुई यही ना सत्य है उपचार के नाम फुगा कोयले से हुए रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जबते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ यहाँ एक जना बाबू है ना सपुआ काट के ना इमरजेंसी पर गई तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जबते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई जिनू जबते ही
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल जबते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पर था यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पर मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आये
1: लगा दे दादू जाए
3: काट करी सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप दस लाख मन बचाई सक दी था वो इन्हीं में से हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप दस लाख मन न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई थप पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली